आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हां आखिया जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तो बगैर। अज दूजा दिन होया इने सोचिया भई हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी।

करो। राणी दी खड़ा गुआच गई है, जदों सारिया रूहां ने प्यार विच भिज के अरदास कीती ते सतसंगियो भाई गुरुदास जी पवित्र उपदेश विच की दस रहे ने, साध संगत अरादिया जोड़ी जुड़ी खड़ाओ प्राणी। जदों राणी अपने जोड़िया कोल पुजे ते की देख रही है, दोनों खड़ावां पईयां ने, सारे देख के हैरान हुए। ए सतगुरु तू अपनियां दी लाज रखदा है, ए मेरे मालिक तू अपनियां दी पैज आप रखदा है। बाबा नंद सिंह जी आखदे सन, संगत विच बैठे होइए ना कदी भी कार विहार वल अपना मन नहीं ले जाना चाहिदा। ए गल बाबा जी दी आपां हिरदे विच वसाणी है। कई बार असी संगत विच बैठे होइए ते सुनदे कीर्तन हुंदे हां, सोचदे रहिंदे हां मैं फलानी जगह जाना सी, मैं इधर जाना सी, उधर जाना सी, आ काम करना सी। नहीं बई, जदों असी संगत विच बैठे होइए कदे भी कमां कारां दा नहीं सोचना चाहिदा। उदों साडे कमां दी जिम्मेवारी, कार विहार दी जिम्मेवारी गुरु नानक

तेरी बाणी विच बड़िया रहमता ने। साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दी उदाहरण दे के भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तैनू आप बचा लवेगा।

रंग न लाए संता से ती रंग न लाए साकत संग विकर्म साकत संग विकर्म कमाए दुर्लभ देह कोई अज्ञानी उज्जड़ अपनी

ते पता ही कूड की करता कूड डोबे पूर कूड़ा दे कूड़ डोबरे कूड़ मिठा कूड़ माखियों।

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कार योग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवन करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए कीर्तन।

कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकौ, तू ठाकुर ऊंच भगवाना।

का शब्द लतन है हीरे जित जड़ा शब्द रतन जिस मन लगा ए हुआ सुबह शब्द से।

कोई मेरे मन विच तांग होवे कि मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे ते जदों तीजा पैर हुंदा।

उल्टी प्यारी दुर्ना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ ना हो जावे। सात सगत बोलो श्री दुर्दे होए पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथो दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पाव।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आख दें।

शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरो न डरो अरस्यो जब जायल निश्चय कर अपने जित अरसे को अपने ही मन को ए लाल चहु गुण जब आपकी ओ निदान बने अत हिरण में।